भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति।

So I tell you first that when we are here practicing all very good, those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono beno ko ek taraf lagao. Next time. क्यों माता है भाई ऐसा है कि आप या तो यहाँ से आके बैठा दो या वहाँ तो आप दो बैठे हो तो पीछे वो लोग भलाई यूँ देखें फंसा यूँ करें जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे मैं तो हमें ठीक है हमें थोड़े थाने करते उठाऊँ कभी आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है कितना है क्या है कैसा हुआ है तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे संग किसके साथ में रहना है जो दे आर गुड And they like everything, and they are helping everybody. That is called Sat-Sangha. The Sat, Sat is the good things, bad things, everything. Sat-Sangha, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sit and like this, do the aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na, wo bade bade ka matlab wo nahi keh raha hu, main uska keh raha hu jo thoda choto aadmi hai nahi, wo to baitho aage, aur moto moto baitha aadmi to wahan se aap dekh sakte ho. And if you not this like that, then they are looking always this side. Phir wo karta hai aisa, to wo kaisa kare, phir wo idhar kare, phir wo aisa karta hai. So first we have to learn who should be here first and then second and like this. Then we have all, to this is Shat. Shat kya hai? Wo Shat kahan hai? वो सत कहाँ से आया है सत केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है जानवरों का भी है वो भी आता है तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन सो तो ऑल पीपल दैट एवरीवेयर They tell to them their mother, yes, mother, but where make the child? Yes, in my, like this, even that. Then it is said, yes, this is very good. So child is going front, and mother is behind it. Taki, the children can be with mother very nice and that, and not going out. Then what happens is something. सो सत्य वो सत्य होता है सत्य ही सत्य है सत्य ही सत्य है वही सत्य कहा जा गया है तो सत्संग और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ सभी को किसी बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गोइंग टू सिट लाइक दैट सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग So, very nice. Satsang. तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ एक भजन लगाओ सत्संग का सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना हाँ तो लगाओ तो बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी और
महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो बैठे। तो मेरा देश है ना, यहाँ पर मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा। तो इतना वो जो है, दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वाटर, एंड इन वाटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड, इज अवर लैंड वेरी मच, यू नो दैट। इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना, दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस, सो डोंट गो होम, नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था, ओनली दोज हू आर लर्निंग वेरी पीपल, सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस, अदरवाइज ऑल पीपल वॉज, अभी भी आपको ले रहे हैं, अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं, है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के, नहीं मोदी जी क्या दूसरे, तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया, वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे, लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big, big, big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many, many, many, many language hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka, kisko kehte hai batao? Haan. Hai? नहीं, संस्कृत में तो है, हाँ सिंधु, हाँ तो सिंधु तक का है हमारा, इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना। तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है, लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी, बहुत बस है दिखता है उनको, और उसके आगे भगवान ही है बस, और किसी के ऊपर है ही नहीं। और दूसरे कोई भी है, क्रिश्चियंस है, वो है हिंदुओं है, उनके सबका है, तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे, सब हिंदू हैं, लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस, so therefore we know that everything that in my country and when my country there, when I go to the airport and then is everywhere, yeah, so I'm coming always with aeroplanes, yes, and I see there, from that I see it, our India hamara idhar se, so that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not, but we want to come to here. The Swamiji have Maheshwaranand. So, I have to do what I have to do. I have to do something now. But he is doing it for me. Yes, I have to do it. But he said, I told them, but he didn't know. I have done, and what do you, what will do? And so my disciples, that everyone
in the whole countries, whole world countries.

ऐसा क्या करो, ये बात है। नहीं तो मैं अगर ये इतना था कि नहीं नहीं मैं तो हम मुस्लिम, वो तो आगे भी पीछे में। बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स, दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर, दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी देवपुरी जी का, वो जो है दैट इज द फर्स्ट। एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट, इट वॉज ऑनली लाइक दिस, एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर, and here my was staying in my house, and there was one very nice person in Rupavas me, aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the, but he was no very great standing very great, wo mahaprabhu ji ke paas aaye the to wahan bitha diya ki baitho aur padhao, to bab ji ke wo nahi the itna छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी, एंड वो आते थे देन घर पे आते थे, फिर वो आते वो बैठते थे। तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है। रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चबड़ गया हो गया यूँ से भी जगह है। हाँ लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मेनी कंट्रीज, तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड। 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास। तो वो ठेठ तक जब ही मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है। अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य ही है। अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ बस। अब हम मनुष्य है, तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है, जाति हमारी एक भारत की है, और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आप लोग मेघवाड़ हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य है, मेरे देश का, तब देख लेना। उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ है कि नहीं? प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं? ए प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो। हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का, प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है, और देश में गांव बहुत बढ़िया है, और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है, और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके माता पिता जी का है, ओके लेकिन

0: आप देखेंगे इसको, देखेंगे कितना रर रर रर इसके, इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं, तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए। और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो, श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय। श्री मारवानंद जी सद्गुरु।

गोचरा मर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

aim, so our life will be successful. So there is something, some reason, that's why I came here. And in the same time, they were discussing and Brahma appeared. And Brahma said, oh, while you are debating, there was already fixed, so you're supposed to marry. And Shankara would accept, okay, we'll do the Gandharva Vivaha then. So Gandharva Vivaha, there are the variety of the Vivaha. The marriage is, normally it explains 8 types of marriage in different scripture. The aiming is the Brahma Vivaha. You go to the girl's father's house and you ask, and father's comes and they do the Swayambar, Kanyadan. So that is the Brahma Vivaha. And similarly, Kumbha Vivaha, Gandharva Vivaha, and Naga Vivaha. So there is a variety of the marriage types. And Shankarachar wants to do the Gandharva Vivaha. Gandharva Vivaha is dancing and also doing the attraction, but not in a big volume. So it's like love marriage in nowadays. So he wanted to do that. And she accepted. They get married. And after marriage, both you were yogi. So when you have got the same energy, both you are yogi, there will be no fight. Evening, oh, I want to do meditation. And he will not say, oh, no, this time for dinner. Or she will not say, oh, no, this is time dinner. Because both are meditative. They sit together and meditate jointly. That's why it is saying that whatever you do for spirituality, it's better to do together. So there will not be conflict. So you meditate together, you yoga. So sometimes you do partner yoga as well. And sometimes you meditate together, you go retreat, pilgrimage together, and nice bond. And you're living for a purpose, not for physically or not for just maintaining your housewife or house life. So you're going together. So Shankarachar and Tulasi also married now in this point. Shankarachar ko vardaan tha ki Shankarachar aap bahut balshali hai, to aapko kya hoga ki ek Tulasi ke saath mein vivaah hoga. Tulasi bahut sare dharma yogini hogi aur Tulasi bahut hi धर्मात्मा रहेगी, तो आपके लिए भी बहुत सुहाग देने वाली रहेगी और पत्नी परायण और पति परायण होकर आप दोनों को शक्ति बहुत बढ़ेगा. तो ब्रह्मा जी का ये आशीर्वाद था. इसलिए क्या है कि पति पत्नी का जो होता है, जो लिखा होता है वही रहता है. इसलिए जो विवाह क्या है कि स्वर्ग में इसको फैसला हो जाता है और धरती में आके ये मनाते हैं. तो इसलिए क्या है कि शंखचूड भी वो पता करके ब्रह्मा के आशीर्वाद लेकर वो चला गया. गया तुलसी ध्यानस्थ थी. जब तुलसी ध्यान करके रही थी तो शंखचूड गया और शंखचूड ने परीक्षा किया तुलसी को. तुलसी, मैं सुंदर हूँ, मैं हैंडसम हूँ, आइए विवाह कर लीजिए. लेकिन तुलसी ने भी परीक्षा किया, मैं ऐसे ही आकर्षित होने वाला पुरुष के साथ में नहीं रहूंगा. क्योंकि पुरुष पहले क्या है कि बहुत नरम होते हैं, आकर्षित होते हैं लड़की के, बाद में छोड़ देते हैं. इसलिए मैं तो कभी आकर्षित नहीं होता हूँ. तो उसने बोला, तो फिर शंखचूड ने, मेरे लिए भी ऐसा लड़की नहीं चाहिए, पहले आकर्षण होती है बाद में छोड़ देती है. तो इसीलिए वो दोनों को बात विवाद हो रहा था. इसी समय में ब्रह्मा जी आ गए. ब्रह्मा जी ने बोला कि आप दोनों को पहले ही निर्धारित है विवाह, इसीलिए आप विवाह कर लीजिए. तो दोनों ने क्या किया कि गंधर्व विवाह कर लिया और सुख शैल में रहे. और जो तुलसी और शंखचूड नाम का दानव का विवाह हो गया. और धूमधाम साथ विवाह होने के बाद में वो लोग आपस में बैठते रहे. और तुलसी योगिनी धर्मपारायण थी, इस कारण से उसका जो दानव का बल भी बहुत बढ़ गया. एक तो पति पत्नी व्रता का धर्म, दूसरा क्या है कि उसके साथ में कृष्ण का कवच था. दोनों करके बहुत बलशाली दानव हो गया. तो उसने धीरे धीरे धीरे तीनों लोक में शासन करने लगा. देवता, दानव सब लोग क्या है कि त्राहिमाम होने लगे. तो उसका कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा नहीं था, क्योंकि वो धार्मिक दानव था. लेकिन देवता लोक को स्वर्ग से उसने खेदा और देवता लोग दुखी थे, बाकी सब लोग सुखी थे. इसीलिए क्या है कि पति पत्नी बीच को अगर संबंध अच्छा हो जाता है तो दुनिया में कोई भी नहीं हिला सकते हैं. इसीलिए क्या है कि पहले पति पत्नी को सुंदरता किस में रहता है, तो उनको एक आपस के संबंध में है. जब संबंध बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा. इसीलिए बोलते हैं कि पति अभी के जमाने में तो कैसा है कि पहले शादी के समय लेकर आओ, तो शादी के पहले साल क्या होता है कि पति थोड़ा बोलता रहता है, पत्नी सुनती रहती है. और शादी के दूसरा साल क्या होता है, पत्नी का पावर बढ़ जाता है और पत्नी बोलती रहती है और पति सुनता रहता है. फिर तीसरा साल क्या होता है, पति पत्नी लड़ाई करते हैं और पड़ोसी सुनते रहता है. इसीलिए क्या है कि अभी के समाज में तो पति पत्नी बीच बहुत समस्या है कि एक दूसरे में शंका, भेदभाव बहुत है. लेकिन हमारे शास्त्र बतलाता है, अगर

people, they bring, they keep at least 5 saligrams. So 5 saligrams, one represents Shiva, one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This Pancha Devata. So everyone, they worship Panchayan in their home. In Panchayan, that's a 5 saligrams. So everyone can keep in saligram and tulasi. It has got medicinal benefits, herbs, and also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first, then they supply, first is oxygen mask. So nature will give you oxygen masks in your home. When you plant tulasi in front of your door, in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free. That tulasi is oxygens, and that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial tulasi. If you put in tea, there is tulsi tea as well. If you wear tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always 2 pieces of tulasi, that removes the bacteria and helps you. The tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality, or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and tulasi's mahima. And Jai Bole Siyavara Ramachandra Ki, Jai Vishnu Bhagwan Ki, Jai. जब शंखचूड़ को जब जब से शंखचूड़ का बल बहुत बल गया बड़ा था क्योंकि पत्नी व्रत धर्म से तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के उसके बाद में पति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए तुलसी के घर में चल गए तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया पाँव धो लिया घर में लेकर गया खाना दे दिया रात में फिर रतिक्रीड़ा किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है तो इस दुनिया में पति व्रत धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी जब इनका पत्नी व्रत धर्म जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा जय बोलिए भगवान नारायण की जय तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है ना तो भाई नहीं तो कोई जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है लेकिन दोनों दुश्मन है तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है अच्छा नहीं है तो ये शत्रु के रहता होता है इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूँ तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी इससे उपाय कुछ भी नहीं था क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दे देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा माफ दीजिए तो तुलसी ने क्या किया श्राप कर दिया श्राप दे दिया श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया पाषाण होके रहना पड़े दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन तो आप पत्थर होकर रहना पड़े
तो पत्थर होकर रहे, तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे। इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है। तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिवजी आ गए और भोले भाले शिवजी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है, इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने

से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है, लेकिन मन नहीं हो सकता है। आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया। वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है। अभी सत्ययुग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है। गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है। वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है, और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र, सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का। इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं। कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं, शालिग्राम को और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिव जी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए। चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं। और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है। इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूर दानव नहीं हारा था। अब क्या है, शंखचूर दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह। तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं, कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्चित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में। तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसे ही कथा है, जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था, ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था वो तांडव करता था उसमें। तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए बहुत दुखी बन गए और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ शिव जी ने बताया और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक इन विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर एंड ही वेंट एंड द टाइम द वृंदा सो द विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो he faint he lost there she was so beautiful and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate and he faint there and Brinda surprised who is this if this my husband he cannot be faint he should not be unconscious he my husband is used to and then before coming Brinda before saying to Brinda Vishnu disappeared and ran away from there so and he was waiting for the second chance And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived. I'm very tired with the Mahadev fight. Can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, my Swami, come here. I'll offer you my lord. I'm waiting for you. You must be tired. I'll give some good massage. Come here. And she gave good fruits and everything and she did the arati for her husband and everything done and that Vishnu did his notorious things, he performs that and the Brinda overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev and Vishnu is in Raslila with Brinda in the Jalandhar's discuss appearance. And in the morning time, again the Vishnu send message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's. That went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only the Vishnu need to remain as like the Pasar, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. Oh Vishnu, you are the strong hearted, you don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda course, you are like the tree, like you didn't move. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth. So that you cannot move anywhere else. Because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you. You better remain as a tree. So, फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्थानी पुराण में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है. लेकिन स्वस्थानी पुराण में
जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया, उसके बाद वृंदा ने चार श्राप दे दिया। पहला श्राप था कि विष्णु छलकारी तू जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े, तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे। फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़ेगा मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी। और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए। और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झार होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए। इसलिए चार श्राप था। तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं। तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग्स देयर। फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास। सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास, द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन, एंड दैट्स व्हाई इन प्रेयर एवरीवेयर वी यूज द कुश ग्रास। एज वी मेंशन अर्लियर सेशन इज कुश ग्रास इज ऑल्सो मेडिसिनली इज थेरापेटिकली वेरी यूजफुल एंड वेरी वंडरफुल हर्ब्स। And similarly, she calls the grass bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isliye is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur kya hai ki hum jo people ko ruk, saligram ko, tulasi ko, kush grass ko, vishnu ke roop pe istemal karte hain. Ye आयुर्वेद के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है। और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है। तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी बिस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है। इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा, तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा। सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष के लिए आ गए, एंड देन He started to remain Tulasi, people, saligram, and kush grass. So nowadays, if you have to pray Vishnu, normally you go to and worship. And it is saying Vishnu, Tulasi, people is a indicator of Vishnu. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility, and that is the because the course of the Vrinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है, जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है, जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है। दैट पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इन हवन आल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड, पीपल वुड्स, तुलसी वुड्स, कुश ग्रास, तुलसी वुड। सो व्हेन यू डेथ आल्सो इन सिमेट्री, इफ योर बॉडी इज सिमेट्री क्रिमेट विद द वुड ऑफ द पीपल कुश तुलसी, इट्स एज लाइक it will be purified your body and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai ki thodi si bhi people ke
पेड़ लकड़ी और तुलसी की लकड़ी साथ में रख लो, और चिता में कोई भी किसी का भी चिता पीपल का लकड़ी से तुलसी का लकड़ी से उसमें कुशकाश रख के उसको चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है। तो वो तो स्पिरिचुअली है, इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है, इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए समीदा बना देता है। जय बोलिए पीपल भगवान की जय। सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन you go and if you have the measurement of the oxygen that has been done many times in Australia also did, so if you take that level of oxygen near close to the peepal tree or basil tree the tulsi ke nazdik jaake check kare, so you will get the high temperature high level, so that's why always tulsi is beautiful and then peepal is beautiful, so it says no matter whatever story is connected but that is a wonderful gift from this universe for the universe, so meditating under the banyan tree and bringing the kush grass in your flower pot and planting the tulsi kush grass is wonderful. That's why our saint and rishi munis they ate that every prayer you need to have leaf of the tulsi, leaf of the peepal and kush grass, that's a compulsory. So if we don't find that's okay, but if we have that one, that's a wonderful perfect prayer. So in the kalasa also that we put, that if you see that in the kalasa there is a 7 leaf, if we don't find the 7 we'll put the 5, so in the 5 leaf that is also panchapallav, mango and peepal and aak and chaap, so tulsi, everything goes there, so that's why the leaf is connected with ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan in Australia and some other country Canada, nowadays the gardener they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree, it takes 1000 to 2000 for one plant, so what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here, you are India, while you are in India you can see and feel the tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye peepal ke rukh mein dhyan karne se, peepal ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se swas prashwasan mein aashwasan to yahi hai, aur peepal ke kya hai, peepal mein Brahma Vishnu Mahesh ka bhi vas hai, isliye peepal ke vriksh ke niche Buddha Bhagwan jo Nepal mein janma hua tha unka, unki unhone bhi ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आकर मेडिटेशन किया था, तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में ही उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था, इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पृश्य से उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ, तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है, इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। So it is saying that in astrology also, if you are suffering some planetary that ill effect, then you can go under the banyan tree on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to graha pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing
in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that

जय बोले भोले बाबा की। सो इन शिव पुराण व्हाट एवर टॉक्स द सुस्तानी पुराण ऑल्सो द सेम थिंग एज आई मेंशन बिफोर इन इट टीचेस अस हाउ वी कैन रिमेन ऑल द टाइम इन अ डीप स्पिरिचुअल वैल्यू द लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी केम इन दिस यूनिवर्स दैट फॉर अ शॉर्ट लाइफ सो इट इज सेइंग दैट इन स्काई व्हाट एवर लाइट गिव्स बाय द स्टार that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you meant that change your vision, visuality, तो शिव पुराण हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है। और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ। तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता, ब्रह्म एक ही है। तो इसलिए ब्रह्म एक है, तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है, वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है। सारे शास्त्रों, ऋषि मुनि, संतगण, महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए, फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है, संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रवीण हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट we always celebrate Hanuman Jayanti, isn't it? So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. He's asking, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time, that go and marry and remain in a dharmacharya,

this is a confusion. So I'm in confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo mukshay shyami ma sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 अध्याय के 66 श्लोक में जो लिखा है वो भी क्या है कि सर्वधर्मान, मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वित्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा. इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट definitely you will go, you will cross the river. If you doubt, then it will not be. That's why it is saying that it increases faith also. And for the faith, that many stories is comes, many things comes. So that's why there is theories. One is, you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृवेत घृतम पिबेत वस्त्री भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः. दैट मीन्स यावत् जीवेत सुखम जीवेत, एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव हैप्पीली, एंजॉय, ड्रिंक, ड्रांस, एंड नो मैटर यू हैव डेट और नॉट, देन एफर्ट घी, घी मीन्स लाइक नेक्टर, एंजॉय योर लाइफ. बट दैट चार्वाक थ्योरी इज दैट सेट, बट इन स्पिरिचुअलिटी इट इज लाइक देयर इज अ ग्रेट नेक्टर. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, trust and follow the Shiva Purans. It says like from the Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite, husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Triguna, proton, neutron and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be seized. So that's why that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now. It's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rudra Samhita, Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, aaj ke liye, aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein पहले से अभी तक क्या हुआ कि पार्वती जी का डिवोशन तो हमने सुन लिया था. ऐसे करके जालंधर, जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा, और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया. पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया. इसीलिए पति बीच, पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है. आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि शंखचूड़ दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था. तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी, और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा. जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे. इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है. शिव पुराण के अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया. तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा. आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिवपुराण महात्म्य हो जाता है. ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है. आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए. शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है. तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे. जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय.

परमो धर्म द हाईएस्ट प्रिंसिपल इज अहिंसा नो किलिंग आत्मा सो परमात्मा एवरी आत्मा इज द गॉड सेल्फ विश्व प्राणी मेरी आत्मा है ऑल क्रिएचर ऑफ दिस यूनिवर्स इन दिस वर्ल्ड इज माई सेल्फ Love them, feed them, don't eat them. Thou shall not kill. Ahimsa, Paramo, Dharma. The highest principle is Ahimsa, love.

जब लक घट में प्राण। दया, दया मीन्स मर्सी, कॉम्पेशन, लव। दया धर्म का मूल है। धर्म मीन्स राइटनेस, अचीवमेंट, प्रिंसिपल। अहिंसा परमो धर्मा, द हाइएस्ट प्रिंसिपल इज ए नॉन वायलेंस। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशियल, पॉलिटिकली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इफ यू टॉक बैड अबाउट समवन और दैट, दिस विल कम बैक टू यू। सो यू शुड बी लाइक ए लाइट। व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट, डार्कनेस इज गॉन। देयरफॉर लॉर्ड लेट मी बी लाइट इन डार्कनेस, सो दैट आई वेर एवर कम आई मे इनलाइट द हार्ट्स ऑफ अदर्स।

नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सद्गुरुदेव की जय। सो विदाउट गुरु कृपा, व्हेन यू गेट अ डाउट, देन यू विल हैव रेस्टलेस एंड यू लॉस्ट अगेन इन द जंगल वेयर यू कांट फाइंड एनी डायरेक्शन एनी मोर। सो मर्सी, दया। सो दिस ब्यूटिफुल पेनफुल एरा ऑफ द ईस्टर्न वी सेल प्रेयर फर्स्ट फॉर मदर मारिया एंड फॉर द जीजस एंड वी थैंक्स देम फॉर देयर मर्सी, देयर ब्लेसिंग्स एंड देयर गाइडेंस। सो माय डियर वन, आई थिंक टुडे इज इनफ। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड प्रोटेक्ट यू, गॉड ब्लेस यू, बी हेल्थी एंड अचीव योर स्पिरिचुअल गोल। एंड व्हेन गॉड allows us or bless us, we will see again here or there. Thank you. Bol Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki. Satya Sanatan Dharma ki jai. Om Shanti Shanti Shanti Om.

0: नारायण हम सब दास प्रभु शरण परायणम सिक्स सो
1: शेष्टिकरात
0: कंटिन्यू
1: अपोकरात
0: फाइव टाइम्स मोर
1: ऐसे पेचकरात

0: विश्वागुरु महामंडळेश्वर परमांश्री स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की जय।
1: कंटिन्यू
2: पकड़
3: ॐ महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे हर

श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्धवगौतमार्या मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्र

0: सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय।
1: न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्नमेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं।

शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ नमः पार्वती पतये हर हर हर महादेव शंभो ओम शलोकपुरी जी महादेव की जय वासुदेव देवेश्वर महादेव की जय सुदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुरी जी गुरुदेव की जय।

0: ओम शलक प्रज महादेव की
1: जय।
0: देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरीजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंत पुरीजी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की

वन डे माता पार्वती सैद टू शिव जी, यू आर गॉड ऑफ गॉड, बट एवरी टाइम यू आर मेडिटेटिंग, हु इज योर गॉड? शिव जी सैद, माई गॉड इज माई गुरु.

0: पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिभजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय वाह।

ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम।

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलकपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति।